0: back right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मद्धम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा दिल से दुआ, कुदरती शिफा दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
2: जवानी द जवानको न बगैर निमगिड़ी, हु कुचरता द दग जवानको प वक्त बानी गम उनकलेशी, न प रारवान वक्त की दग जवानके स्तासु द खाइस द खराबे दो बाइस जुड़ देशी। द ऑयली स्किन और द दानो द पारा यो डियर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम, तुम चिप सलूर सौ रुपए बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए। डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश तुम चिप द ऑयली स्किन और द एक्नीज द पारा देर बेहतरीन फार्मूला दा, तुम चिप सलूर रजू की सासु द स्किन एक्नीज पिंपल प मुकम्मल तो गबाने खत्म हुई। और ये वाजिदा ना द दग दानो चकम दागुन दी अगर हम पर मुकम्मल तो गबाने खत्मेगी। पदे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड, सल्सिलिक एसिड, ट्री ट्री ऑयल और क्लिंडा माइसिन, कुमची यो डेर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी। और दग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हम दी, कुमची सिर्फ और सिर्फ पसलूर उस्पो की दनन दनन स्तासु दानी और दानो दागुना प मुकम्मल तो गबानी खत्म हुई। नो जर तर जरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल सोरना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन डेरे मसले अवारे कई। द मजीद मालूमात द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com.pk।

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।

0: सी लाइव कॉलर स्वीटी फ्रॉम शबकदर वेलकम अनुभव नगहानी अफतुनु नौसिबतुनु नौ साजलेगी आमीन सुम्मा आमीन यो लाइव कॉलर गोरो मचे मुसर सुख दिसो लोहाड़ी लेट्स सी लाइव कॉलर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि
0: व बरकातुहु वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम स्टडी मुझे बखैर आले तो आयु द बेलाडोना ऑर्गेनिक व्हाइटनिंग क्रीम बेलाडोना ऑर्गेनिक व्हाइटनिंग फेस वॉश कम जे खास कर द तेर सरो द बार रे जाता बेहतरीन फार्मूला बेलाडोना ऑर्गेनिक व्हाइटनिंग क्रीम दी द अगे कॉलर मुसर बलायन माने द गुरुजी मुसर सुक दियो सोई जी स्टडी मुझे बखैर आले मुसर सुक बलायन माने द कम देने कॉल मिलो कड़े जी
1: अस्पताल
0: की नंबर बने सुमरम खल रिंगुनो की माँ मोबाइल मतलब बीमार दौरान की बीमार सर बीमार मखे तनास हुई और मोबाइल तारा विस्तु तो मोबाइल बने खबर लगी जुमानम चमा नंबर आनम यू मोबाइल यूसेट तब्रूत हुई माँ तो बिल्कुल पता नहीं लगी उस वक्ति मोबाइल बने दुम रिंगुना आगली हूँ जिसमें मोबाइल चार्ज मुकम्मल खत्म करे हूँ नो सिकल स्टूडियो तरसुम दारे चार्ज से लगे जुमा मोबाइल की लगे आप रोशन हो सब पूरी तकरीबन 19% आओ शकीला वफा हुई डॉक्टर भाई लग शरबत और तो उसका शरबत बमर तो उसको खजी दार तू बाजी शरबत देखो खी की ना खो गई किसा शरबत हम अल्लाह दे डेरे कदरमंद साता
1: मैं फिकर गुल बाबा

ओके जी, डेरा डेरा मानना मदीहा, थैंक यू। हाय हेलो ब्रो, संग तबियत मु संग दे शो जमा उस्ताब शान नाइस दा ए प्लीज मादर अफगान शेर हुआ एकना और दा सॉन्ग रात प्ले के।